0: खिरक खिरक थकना क्यों, नक टुनक थकना क्यों, झिझक झिझक झकना क्यों, बंदा हो जिंदा हो।
1: दिनकर नमस्ते सब तू हनिया डी त्रुंगानो एफएम